ले जाने के लिए भेजा को लिंबा को शायद एरिया से बोले गांव को तेरी गले गए बोले अनिंदी नाम का चाट को गिरो जोरी चाहिए को पर रे रा